0: थोए दह या चैत धुने नेगु चोनिगु वा स्वास्थ्य नापो फुक्क व्यवस्था या त सर्ख या त इनाप यागुदो पार्टी केन्द्रे ज्याकु वनस्थली मिक चुङ्गु सचिवले मुज्या अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण निसोना सुकुम्बासिया लगत मुगी बोले तक अधिकरण यागो संरचना डोजर मछले तन तहागुदु मुज्या ओगु स्थानीय तय निर्वाचनी नीति क्यान्डिडेट क्लब या घोषणा यागु वा उम्मेद्वार लेगु ज्या विधि कोचुकु न कनादिल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाया सभापति रवि लामिछा नै उद्योगी व्यवसाय त आया सरकारप्रति सशङ्कित मोची त इनापियानादिगुदो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपाल उद्योग परिसङ्घ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नाप निजी लागे संस्था प्रतिनिधि पि नाप सल यासे सरकार नाप मज्ञा त इनाप यनादिगु ख सभापति लामिछा नै छु व्यवसायी व पात्र तेस देश अर्थतन्त्र थगु लाती थगुली सरकार उकिया त चिके तिङ्गु नाप सरकार विद्यालय लागा या त फिङ्के त सङ्घ स्थानीय या त दुग्याङ्क स्वातिङ्गु दु शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय विद्यार्थी भर्ना वो शुल्क कचौ या विशेष स्थानीय सरकार एवं सरकारप सल या तङ्गु दु सिंहदरबार या मन्त्रालय थौ सोनिग दुगु महानगरपालिका नगरपालिका कजिपी व सरकारी उच्च अधिकार पि नाप सह या तेङ्गुदु शहरी विकास मन्त्रालय यहाँ बागमती अभाचकुसी सिधे जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रिया तो प्युपी नागरिया त हाक्न स्वापु त वे त इनाप यागुदो मन्त्रालय ग्वाली मापी लिसे आशतके अधमत केना चोपी नागरिया त प्राथमिक दर्ता केन्द्र या कथ कोचिना तगु त्रिपुरेश्वर र दस रङ्सलाई वना दर्ता जुत इनाप यागु ख वास्तविक भूमि नागरिक या डिजिटल लगत सङ्कलन यना होल्डिङ सेन्टर पाखे व्यवस्थित व्यवस्थापन यागु प्रबन्ध यना तगु दु नागरिक त आवास भोजन स्वास्थ्य सेवा मस्तेगु शिक्षा लिसे मनोवैज्ञानिक परामर्श लिसे आधारभूत सुविधा बिगु दु सहर विकास मन्त्रालय पाखे पिथङ्गु विज्ञप्ति नेतना तगु दु वास्तविक भूमि लिसे आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिक त दर्ता केन्द्रीय उपस्थित जुया सरकार पाखे बिगु सेवा सुविधा छेलेत नाप मन्त्रालय इनाप हेटौडा यल स्वाइगु कान्ति लोकपथ या भीमफेदी गाउँपालिका आठ भरेङ डाँडा वगु चलचिका यातायात यहाँको गुदु जिल्ला प्रहरी ज्याकु कथ मिग इनेसिया इलेनिसे यातायात चाकु गुख जिल्ला प्रहरी ज्याकु या प्रवक्ता प्रहरी नायब उपेक्षक पुष्कर बोगटी मकवानपुर या त्रिभुवन राजपथ पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग व भीमफेदी कुलेखानी जुया ये ओइगु सडक दिसिलाक झ्यानाचोङ्गु नेतनादिल अथे हेटौडा बिरगाउँ चितवन या नारायणगढ व भीमफेदी हेटौडा ओइगु यातायात न दिसिलाक झ्यानाचोङ्गु धागुदु विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस नेपाल एन तिथि ज्याजो एना हङ्गुदु दिवस यालसत्या बिहादीको छगु हसना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा स्वतन्त्र प्रेस बिना सुशासन पारदर्शी व जनविश्वास मजुइगु नेतादिगुदो वेकमा स्वतन्त्र निष्पक्ष व जिम्मेवार प्रेस या त लोकतन्त्र या थाहा देखेमा नाप थैदिल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवार मन्त्रालय भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली पाके वास्तविक सुकुम्बासी या परीक्षण कुगुदो दाबी यापी सुकुम्बासी या नामे सरकारी अभिलेखे दे या गणन लागे जग्गा दु मरु धक्का सिकेत थो प्रणाली छेलगु मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्ट धाइदिगु ख खोपया सुकुम्बासी तगु निगु थासे मिग चिकित्सक नाप स्वास्थ्य पुचल स्वास्थ्य परीक्षण उपचार शिविर ह्याकुगुदु मध्यपुर थिमी नगरपालिका कृषि विकास तालिम केन्द्र व खरिपाटी या नेपाल विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्र वना सुकुम्बासी शिविर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर ह्याकुगु ख बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगर व स्वास्थ्य सचिव डाक्टर सुमित्रा गौतम थथे परीक्षण ह्याका दिगु ख नेपाल चीन सीमा नाका र स्वागुडी जुया पवित्र धार्मिक स्थल मानसरोवर व कैलाश पर्वत या तीर्थयात्रा यहाँगुदो आतको सोसो तीर्थयात्री चीन या केरुङ नाका जुया मानसरोवर वोङ्गु अध्यागन ज्याकु रसुवा टिमुरे धाकु ख ज्याकु या निमित्त प्रमुख मेघनाथ शर्मा या कथ थुसी भारतीय रुसी व बेलायती नागरिक नापो मानसर्व यात्रा बोटी कागु ख ओङ्गुदे रसुवा गढी नाकाजुया छिन्छद सोस व चे छमन तीर्थयात्री मानसरोवर कैलाश वङ्गु अध्यापन ज्याकु धाकुदु स्रोत श्री मदगु निखुगु लाक गुई च्यादो नाप छम भारतीय नागरिक लिसे निमसित चोङ्गुदो मि शनिबार ए उनै तेङ्गु अवस्था विराटनगर विमानस्थल पाखे भारतीय मालदा जिल्ला सुजागञ्ज सिन्धा चञ्चलिया श्री खुद दुम मोहिदिल अली यात चिन्खुगु लाक नाप जोङ्गु ख अथे हे शुक्रबार धरान उपमहानगरपालिका अठारिया श्री न्याद दुम दिलीप तामाङ या त उघे विमानस्थल पाके स्रोत सिमरुगु छिन्छुगु लाखना पुङ्गु प्रहरी धागुदो निमिषित जुना अनुसन्धान जुया चङ्गु धागुदो भारतीय दिल्ली या छका छे एयर कन्डिसनर एसी मुया नोगु मी मोटिन गुम मुनु त सिगुदो छम मचा व पेम मिसापी नापो गुम सिगु व निम खापा जुगु धागुदो एयर कन्डिसन जुगु विशेष अनुसन्धान जुया चङ्गु प्रहरी धागुदो थौ देङ खसु तुइगु धागुदो कोशी मधेस बागमती गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेशया छगुनीगु थासे व कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेशया छुचु थासे नन्याइगु लाप्सा तोइगु वा वैगु फे वैगु व च्वापुङ क्वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागुदो मिग सुनिगुले नि पेङ्गुपुरी च्यागु डिग्री तक लुगु क्वाज थौ नि पेङ्गु निसे नि खुगु डिग्री तक था उनिगु दुग्मा यागुदो थौ सुथे न्याता इजुया चिन हे गुमनेटे लुगु सूर्य शनिलया खुता इजुया पि न्यागु मिनेटे बि नेपाल भाषी बुख कोचाल शुभ
1: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ। दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौ।
2: नागरिक लगानी कोष।

हवा लामा तिन दिपा लामा ला कायरी मुबा चु वाइली छ गेतांग स्यालगार री दिपेन अर्कु वाइयान गे वाई से विवान मला माया लामा हिंसेम नायला सिमनांग री खाइमा दामन टिबारी खामनो विभागा दा विश्वास मला दुई थिन परिस्थिति खप्प दामन मुसाइनुन गाला भावना गाला माया खाइमा इनुन पोसेला आरे ये गाला लुइला खप्पै बिमा लामन महत्वपूर्ण मी ये तापसे चु ब्रिल्बा चु सम्बन्ध तान्दे त चक्के नाङ्गिन रेङ्बा दुई दोना अर्थात् जुगजुग दोना माया लसिन टिसेलमला विभव वाइङ्गे वाइसे विभनमला माया लसी सेम्री कोर्ला जुनी जुनी भर्दा छ्योना एलन माया जैलेन जैलेन चु तिङ नाङ्री सोला विभवाई वाइरिकाइमला सन्तोष लामाथेन सुमिना लोला।

गेतङ सालगारी राङ्दा देपेन डेनमुला बन्दिराङ सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल ग्याम तामाङ गुएला सातला तिरेम खाबा स्यालगार गेताङ यान छिपा गेनमला तिरेले गेताङ रे ज्याब ज्याब अझ पाङ्नमा रोमान्टिक वाइ गदे यान छिपा गेनमला चुनुन ताङरी अर्को भाइ यान गेया धरेम थानबेट मुबा वाइ से पाङबान मला एनुन गाला सेमला रानी गाला मायाला खानी हिन्न बिबताम सेमरी खाइमा दामान ङाम सिटी बोमला दिल्द बिसाम यसै गाला लुइरी विशेष ग्लाहकिन सिटी बोमला गाई ह्याङला मायारी देनब माया आथेन लामन नुप्प आत्मीयता याङ सिटी बोमला यथेन गाला चु माया से ह्याङला लुइद अर्थपूर्ण सुपारी खाम बोमला यथेन गाला चु ब्रेलबा चु माया खाबरेरी अझ नुप्सी निसेल मला विवाह राङबा सिक मुब भाइङले वाइसे बिबन मला गाला सेमला रानी ए गाला मायाला खानी ए एनुन गाला सेमला जो एनुन गाला लुइलरो वाइरी काइमला अमृत लामा थेन शशिकला मोक्ताल।

비범은하니 랑스 셈니바 밀람 샬지바 랑바 카이눈 자바 만바 보마 카신 탐 방사이눈 가데 자바 만바 몰라로 테랑반 와이모바 둥마 카이모 인디라 골레틴 라줄라말라 카이리모바 추하이 जब गिक्सिया अर्को त दिनमा थिए नुप्प माया लासिटिला बिसाम तिरना तिरे खालदम्मा सेन दिम नाम सोनुन तोला दान्दे बिसाम दिनमा थिए नुप्प माया लाबलिस शोभा दिम नामला कोइतामला भगवाइन्यन्दे वाइसे विवनमला एला माया लाइहुल गाला एलान माया दिम नाम वाइरे काइमला विशाल कालतान थिन जितु लपचन्ना।

0: दान्दे धान्जी दान्देला ब्योन पुस्ताला काइपा विशाल कालतान थेन काइमो जितु लोपचन लकाइरी मबचु भाई वास्तवरी दान्दे विशाल थेन जितुल वाइको बा जोडिता तामाङ वाइ संगीत माया लाबाका दिसै लामन सेमनिसिटी बुबला विशाल थेन जितुल वाइको बा जोडी राङमान तामाङ वाइ संगीत थुमला मूर्धन्य काइपा चन्द्रकुमार डोङ थेन डोङबा काइमो इन्दिरा गोलेला जोडी दानुन लामन सेन सेमनि बुबा दान्देनुन सेमनिसिटी बुमला जुदे लामा स्यानस्यान वाइगा दिन यान्सिटी बा दुइरी लेजेन्ड काइपा थेन काइमोला काइरी मुबा वाइ आङ्यान सम्तिनीलाई गे तान्नुन अपुरता बारी खाम्ला त्यता बस्ते दान्दे त ज्ञानगे एमी गाला सेमला लानी एमी गाला मायाला छु चुसेम गाला चुलुई गाला तिमी हेन्से एदन चुलजी ए गाला मायाला जुबे भाइ वाइरी काइमोला चन्द्रकुमार डोङथेन डोङबा काइमो इन्दिरा गोलेला
1: ए

चु रेडियो नेपाल हिना तामाङ सानगिर रिढाङनी दाझेनमुला गाइन्दिरा थिङ काइब्लोन बालेन्द्र साहसे सा आरेबा मिनी कादेदा मोसेसी व्यवस्थित लाबान समस्या कादेदा थुब्ना लाबारी सरकार से घे लाबान मुला बिसी सुङबा मुला काइब्लोन बालेन्द्र से तिनी सामाजिक सञ्जालडी ब्रिस्युबान लुइदा जोखिम रिथान्सी असुरक्षित घ्लारी चिबान खाबा मिनी कादेदा सुरक्षित घ्लारी थान्सेदा मुला याम्बु उपत्यकाला गान्धी गाम्री थेन सरकारी सारी ठिम्दा नाङसी सोबा दिम टहरा कादे हटाई दिसी व्यवस्थापन लाबा ताम्री तोबा आतोबा खाबा ताम कादेरी सरकारलाई ध्यान छेङबा मुला बिसी सुङबा मुला काइब्लोन साहसे सरकार सा आरेबा मिनी कादेदा सुरक्षित ग्लारी बोर्सी थानबारी प्रतिबद्ध मुला सुङबान खालाइ नोन नेपाली मिनिदा दिम सा आरेबा सरकार से आसोबा बिसी सुङबा मुला सरकार से संवैधानिक सेङझाङ गिक्छा संशोधन अध्यादेश 2083 जारी लाबारी युलुचो ओन्छाङ दोषी सिफारिस लाबारी पुइबा निर्णय लाबा मुला तिनी चिबाब्लोन सेङझाङला चिसाङसे चु निर्णय लाबा हिला चुङाछा सरकार से सिफारिस लाबा संवैधानिक सेङझाङ सम्बन्धी अध्यादेश युलुचो रामचन्द्र पौडेल से दोषी विचार लाबारी भिवान तिलमा याइसी पुइबा मुबा युलुचो से याइसी पुइबा अध्यादेश दोषी सिफारिस लाबा मुला बिसी सरकार ला सुङबोन तेन स्यार विज्ञान तेन प्रविधि ब्लोन सस्मित पोखरेल से सुङबा मुला चिसाङ से भारत थेन जी टू जी सरकार सरकार घ्याम्नोन तोङ डुचुई मेट्रिक टन युरिया साथेन तोङ निचुई मेट्रिक टन डिएसपी सार ग्लुबा निर्णय लाबा मुला चुराङला सिन तिनीला चिसाङ से सिंहदरबार रङ्गाला पोबा गुरु योजनाला स्वीकृति लाबा मुला बिसी नोन सुङबोन पोखरेल से सुङबा मुला नोर ब्लोन डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले से मिनिसे माइबा राङबा बजेट खाला बिछी सुङबा मुला तिनी नेपाल उद्योग छोङ महासङ्घला डुचुई छातिदिङ ह्वाल्ला ठोङचेङ लासिबान ब्लोन वाग्ले से दखाबा नोरदिङदा तोबा राङबा बजेट बाबा थेन निजी थुम्दा विकास लाछ्याम बोर्सी निबा बिछी सुङबा मुला ब्लोन वाग्ले से ब्लोन सेङझाङरी निजी थुम्दा सोना लाबान ग्रेन सोभारी रणनीतिक प्रस्ताव थान्बा मुला बिसी सुङबा मुबा सरकार से दिम सा आरेबा कादेला प्रमाणीकरण लाबा गेती बामुला सहरी विकास ब्लोन खाङला अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिला समाज शास्त्री खगेन्द्र बहादुर विष्ट से सुङबा अनुसार गिक्छा रेम याम्बु महानगरपालिका नाङला गोर्सोम ग्लाग्याम विस्थापित मिनीला प्रमाणीकरण ती बाखिन्ला याम्बु महानगरपालिका वडा नम्बर चुई घिकला थापाथली वडा नम्बर कु ला गैरी गाउँथेन सिना मंगल महानगरपालिका वडा नम्बर सोमचुई घिक ला शान्ति नगर थेन मध्य पृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर घिक मनोहरा स्योङ रि अतिक्रमण लसी शोभा बस्ती हटाइदिबा लिचा मिनी कादे दास सा मुलाकी आरे विवा छुट्याइदिबारी गे ती बाहिला सरकार से विस्थापित ताबा मिनी कादेदा व्यवस्थापन लाबारी किर्तिपुरला धारा स्वामी सत्सङ दिमखाङ छार बसपाक थेन माछा पोखरी थुम्ला होटेल भक्तपुरला नेपाल विद्युत प्राधिकरणला तालिम केन्द्र थिएन बोडेला सनम तालिम केन्द्र रि अस्थायी शिविर तोक लाबा मुला सहरी विकास ब्लोन खाङसे याम्बुला ग्लाग्लारी मुबा सुकुम बासी बस्ती हटाइदिबा दुरी मिन दुईबारी छुट्ताबा मिनी कादेदा सम्पर्करी खाबारी मोइजेन लाबा मुला ब्लोन खाङसे तिलमा प्रेस नोट तेबान चुराङबा मोइजेन लाबा हिला रो तोबा थेन तिला लाबा बिसी अलमल ताबा मिनिदा धर्ता तोकलाबा केन्द्र दशरथ रङ्गशालारी निसी धर्ता लाबारी ब्लोन खाङसे मोइजेन लाबा हिला गान्धी किनार ग्याम हटाइदिबा सुकुम बासिदा भिसी सरकार से त्रिपुरे सोर्ला दशरथ रङ्गशालारी लुई शिविर सेङबा मुला लुइथेन जनसङ्ख्या ब्लोन खाङला रोरी सेङबा शिविर ग्याम विस्थापित मिनिदा टाङ्गा आकिन्ना लुई सेवा पिन बाहिला शिविर तिनी धोना तासेदा मुला
सुङबोन डोल प्रसाद अर्याल से ग्रेन सचेतक थे काठु लासी बामुला सुङबोन अर्याल से संसद ला दखाबा ग्रेन हवालदा खरंग लासी ज्याबा शोभा भिभा तामरी संसदरी गोबाङ लाबा मोकोन दल्ला ग्रेन सचेतक सचेतक थे काठु लासी बाहिनला काठु लिचा सानगिर बोन कादे थे लिङमो लासीबान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाला सचेतक कान्ति शिखा धिताल से संसद ला घेदा खारङ लासी ज्याबा शोभा भिभा ताम्री लिङमो ताबा मुबा बिसी सुङबा मुला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाला तिल्मा चिबा ब्लोन खाङला चिसाङसे दाते हटाइदिबा छिम्दा नाङसी शोभा दिम्थेन सुकुम भासी बस्ती ग्याम तेबा भिनिदा चु दिङला चैत्र नाङरी मोकोन व्यवस्था लासी पिनबारी नेपाल सरकारदा मोइजेन लाबामुला पार्टीला मियो घेजाङ वनस्थली रि चिबा चिसाङ लिचा सुङबोन मनिष झासे अधिकार पुइबा प्राधिकरण सोसी सुकुम भासीला लगत आरूपते दोना अधिक लाबा दिम टहरा बिमा स्यान्दो ग्लाला दिम टहरा आफू पारी मोइजेन लाबा मुला सिङबो सुङबो झासे ठिम्दा नाङसी शोभा दिम टहरा थेन सुकुम बासी बस्ती व्यवस्थापन लागे लाबा रङ कादेला चुनावी भाचा पात्र अनुसार नोन ताबा मुसाइनोन थेनी कादेला चिबा चाबादा गोसी सुरक्षित थेन व्यवस्थित ग्लारी थानबारिन सरकारदा मोइजेन लाबा मुला नेपाली सा लिपुलेख ताबन सेङबा विवाह कैलाश मान सरोवर यात्राला ताम्री नेपाल सरकार से राङला ताम भारत थेन चीन निनोन ह्युल्दा कुटनीतिक घ्याम दोषी पाङबा मुला चु ताम्री दोषी स्पष्ट लाबान ब्लोन रोङसा ब्लोन खाङसे चु गाछानोन नेपाल सरकार से भारत सरकार दा होजा थुम्री सडक घ्यालम शोभा मुर छोङ थेन तीर्थ लाबा राङबा गेकादे आलाबारी पाङबान खाबा मुला बिसी पाङबा मुला चुराङलासिन लिपुलेक थुम नेपाली सारी मुबा ताम्री ङेङ्गोर ह्युल चिन्दानोन पाङसी झिन्बा मुला बिसी ब्लोन खाङला सुङबोन लोक बहादुर पौडेल छेत्रीसे तिनी छिपा कागुरी भ्रिबा मुला सरकार से काम्रे शनिबार थेन दिनिरे आइतबार निसरारी निरा सार्वजनिक विदा पिनबा लिछा पर्यटकीय घ्यालसा पोखराला पर्यटन डी झ्याबा ताबा मुला निराला विदा सेलामा पोखराला होटेल डी गाछाला भीमा चुई प्रतिशत पर्यटक कादे लेबा मुला बिसी होटेल सङ पोखराला चोहो लक्ष्मण सुवेदी से सुङबा मुला पोखरारी लाना राङबा युलान मिनी कादे लेबा से

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संवैधानिक परिषद प्रथम संशोधन अध्यादेश पुनः सिफारिश करने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। भूमिहीन और अव्यवस्थित निवास में रहने वाले नागरिकों के लिए दीर्घकालीन समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का कथन। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया के घर संपत्ति शुद्धिकरण विभाग ने मारा छापा। सुशासन के पक्ष में कानूनी जांच में सहयोग करने के मुख्यमंत्री बानिया ने जताई प्रतिबद्धता। और अगर अमेरिकी सेना हॉर्मुज क्षेत्र में दाखिल होगी तो उन पर हमला करेंगे, ईरान ने दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने संवैधानिक परिषद प्रथम संशोधन अध्यादेश जारी करने के लिए इसे फिर से राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल के पास भेज दिया है। इससे पहले सरकार ने यह अध्यादेश राष्ट्रपति के पास भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति ने इसे पुनर्विचार के लिए रविवार को वापस सरकार को लौटा दिया था। हालांकि आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस अध्यादेश पर पुनर्विचार किए बिना उसे ज्यों का त्यों फिर से राष्ट्रपति के पास सिफारिश करने का निर्णय लिया। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने दी। इसी बैठक में लिपुलेख लिम्पिया द्वारा सीमा विवाद के समाधान के लिए नेपाल और भारत के बीच समन्वय आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने भारत के साथ G2G माध्यम से 60,000 मेट्रिक टन यूरिया और 20,000 मेट्रिक टन DAP उर्वरक खरीदने के लिए कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड को सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी। बैठक ने संसद भवन परिसर में प्रवेश व्यवस्था सहित सिंह दरबार परिसर की संशोधित कुरियोजना को मंजूरी दी। इसके अलावा पारंपरिक बॉयलर को इलेक्ट्रॉनिक बॉयलर से बदलने के लिए उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने और वायु गुणवत्ता मापन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व बैंक से प्राप्त होने वाले 52 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती ऋण और 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को भी स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि काठमांडू घाटी के नदी किनारों और सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को व्यवस्थित कर भूमिहीन और अव्यवस्थित रूप से रह रहे नागरिकों के लिए दीर्घकालीन समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। नदी किनारों और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण प्रबंधन को लेकर विभिन्न टिप्पणियां और आशंकाएं सामने आने के बीच प्रधानमंत्री शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार का कदम नागरिकों को हटाने के उद्देश्य से नहीं है। सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से संदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की सभी कार्रवाइयां नागरिकों को विस्थापित करने के लिए नहीं बल्कि आवास के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए स्थायी समाधान निकालने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में चल रही प्रक्रिया को लेकर लोगों में जानबूझकर डर फैलाया जा रहा है और सभी से अपुष्ट सूचनाओं और भ्रम के पीछे न पड़ने की अपील की है। इनके अनुसार भूमि संबंधी आयन 2021 की कुछ धाराओं को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अध्यादेश के माध्यम से हटाया गया है। कानूनी बाधाएं हटने के बाद वास्तविक भूमिहीन नागरिकों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने, विवरण सत्यापन और अभिलेख निर्माण का काम शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया से भूमिहीनों की वास्तविक स्थिति की पहचान कर पारदर्शी और दीर्घकालीन समाधान की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। असुरक्षित स्थानों पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि अन्य भूमिहीनों के मामले में संबंधित आयोग की सिफारिश और संकलित विवरण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने भ्रम में न पड़ने, अपुष्ट जानकारी न फैलाने और अनावश्यक रूप से न घबराने की अपील करते हुए दोहराया कि किसी भी नागरिक को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग ने बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया की काठमांडू स्थित नक्साल सुंदरा और हेटौड़ा उपमहानगरपालिका 5 पिपले स्थित घरों व कार्यालयों में छापा मारकर दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। मुख्यमंत्री बानिया ने अपने निवास और संबंधित कार्यालयों पर हुई छापेमारी को लेकर कानूनी जांच में पूर्ण सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस घटना के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। विज्ञप्ति में उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश सरकार के संचालन में मितव्ययिता, खर्च कटौती और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जा रही है। संविधान संशोधन के लिए बहस पत्र तैयार करने हेतु गठित कार्यदल मंगलवार को संवैधानिक निकायों की पूर्व प्रमुखों, पूर्व मुख्य सचिवों, परराष्ट्र विशेषज्ञों और पूर्व प्रशासकों के साथ चर्चा करने जा रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के राजनीतिक सलाहकार असीम शाह की अध्यक्षता में गठित ये कार्यदल प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक परामर्श करेगा। कार्यदल के सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदी के अनुसार इस बैठक में शामिल विशेषज्ञों से संविधान संशोधन से जुड़े विषयों पर आवश्यक सुझाव भी एकत्र किए जाएंगे। गत वैशाख 10 को हुई कार्यदल की बैठक में पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारियों, पूर्व मुख्य सचिवों, परराष्ट्र विशेषज्ञों तथा प्रशासनिक विशेषज्ञों से परामर्श करने का निर्णय लिया गया था। उसी निर्णय के अनुसार ये चर्चा आयोजित की जा रही है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: हजुर दर्शन,
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते बाबुजू।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ बाबुजू।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् बाउजू।
4: ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: हे, तँ पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
3: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। थाईलैंड स्थित नेपाली दूतावास ने कंबोडियाई सरकार के नए और सख्त नियम की ओर आगाह करते हुए नेपाली नागरिकों से वीजा अवधि से अधिक समय तक कंबोडिया में न रहने का आग्रह किया है। थाईलैंड स्थित नेपाली दूतावास के अनुसार कंबोडिया सरकार ने ऑनलाइन स्कैमिंग में संलिप्त लोगों के लिए नए कानून लागू किए हैं, जिसके तहत अपराध की प्रकृति के अनुसार $500,000 तक जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। दूतावास के अनुसार कई नेपाली नागरिक विभिन्न उद्देश्यों, विशेषकर पर्यटन के नाम पर कंबोडिया जाकर वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी वहां रह रहे हैं। साथ ही कुछ नेपाली नागरिकों के अवैध ऑनलाइन स्कैमिंग केंद्रों में शामिल होने की जानकारी भी मिली है। दूतावास ने सभी नेपाली नागरिकों से अपील की है कि वे वीजा अवधि से अधिक समय तक कंबोडिया में न रहें, किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल न हो और यदि शामिल हैं तो तुरंत उसे बंद कर नेपाल लौट आएं। इसके अलावा आकर्षक वेतन और सुविधाओं के प्रलोभन में आकर पर्यटक वीजा पर कंबोडिया या अन्य देशों में रोजगार के लिए न जाने की भी सलाह दी गई है। दूतावास ने यह भी अनुरोध किया है कि विदेश जाने से पहले नेपाल के वैदेशिक रोजगार विभाग और संबंधित देश में स्थित नेपाली दूतावास या वाणिज्य दूतावास से अनिवार्य रूप में संपर्क किया जाए। पोखरा महानगरपालिका ने अतिक्रमित संरचनाओं को हटाने के लिए 35 दिन का नोटिस जारी किया है। बताया गया है कि बस पार्क के लिए निर्धारित 205 रोपनी यानी करीब 5.5 बीघा जमीन वर्षों तक उपयोग में न आने के कारण अब घटकर महज 47 रोपनी यानी 3.5 बीघा रह गई है। अध्ययन के अनुसार इस जमीन पर 400 से अधिक सुकुम्बासी परिवार रह रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बिना पुनर्वास के हटाए जाने का विरोध किया है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल ने अपना पहला वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार को पेश कर दिया है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के संचालक समिति अध्यक्ष डॉ. महेंद्र विष्ट ने आज ये प्रतिवेदन संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ. विक्रम तिमिल सिन्हा को सौंपा। सार्वजनिक सेवा प्रसारण आयन 2081 के अनुसार इस संस्था को प्रत्येक वर्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही सरकार को ये प्रतिवेदन संघीय संसद की संबंधित समिति में भी पेश करना होता है। प्रतिवेदन सौंपते समय अध्यक्ष डॉ. विष्ट ने बताया कि इसमें नेपाल टेलीविजन और रेडियो नेपाल की वर्तमान स्थिति, तकनीकी क्षमता, संगठनात्मक संरचना, प्रसारण प्रणाली, वित्तीय स्थिति, अब तक किए गए सुधार प्रयास, मौजूदा चुनौतियां और आगामी कार्य योजना जैसे विषय शामिल हैं। दक्षिणी रसुआ की नौकुंड गांव पालिका के 4 स्थानों पर पक्के पुल बनाए गए हैं। घिचेत नहर, फलाखो नहर, पंगू और पाहा नहरों पर पुल निर्माण के बाद सभी वार्डों के नागरिकों को वर्ष भर सुगम यातायात की सुविधा मिली है, ऐसा अध्यक्ष नुरपू सांगबो घले ने बताया। इन पुलों के निर्माण में लगभग 24 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। गांवपालिका ने अब तक 74 किलोमीटर ग्रामीण सड़क भी बना ली है। कंचनपुर की पुनर्वास नगरपालिका 7 स्थित ईंट भट्ठे में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर टकराने से 2 लोगों की मौत और 1 व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस के अनुसार मजदूर कच्ची ईंटों के ढेर पर सो रहे थे, तभी पानी छिड़कने वाला ट्रैक्टर नियंत्रण खोकर उन पर चढ़ गया। मृतकों में उत्तर प्रदेश भारत के 27 वर्षीय अजय कुमार और 9 वर्षीय पवन कुमार शामिल हैं। घटना के बाद चालक फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी सेना के हॉर्मुज में प्रवेश पर ईरान ने चेतावनी दी है। अमेरिकाद्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों की सहायता की घोषणा के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी सेना वहां प्रवेश करती है तो हमला किया जाएगा। ईरान ने कहा है कि वो जलमार्ग पर नियंत्रण बनाए हुए है और किसी भी हस्तक्षेप का जवाब देगा। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ने और युद्ध विराम टूटने की आशंका जताई जा रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संवैधानिक परिषद प्रथम संशोधन अध्यादेश पुनः सिफारिश करने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। भूमिहीन और अव्यवस्थित निवास में रहने वाले नागरिकों के लिए दीर्घकालीन समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का कथन। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया के घर पर संपत्ति शुद्धिकरण विभाग ने मारा छापा। सुशासन के पक्ष में कानूनी जांच में सहयोग करने की मुख्यमंत्री बानिया ने जताई प्रतिबद्धता। और अगर अमेरिकी सेना हॉर्मुज क्षेत्र में दाखिल होगी तो उन पर हमला करेंगे, ईरान ने दी चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
6: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नुपर्ने होइन र?
7: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही नै मजाले चलाउने
8: *1415# डायल गर्नुहोस्।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
9: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ। दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौ।
10: नागरिक लगानी कोष।
11: झण्डु आयुर्वेद।
12: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
11: प्रेसर, सुगर, बाक, डिप्रेसन, मोटोपन, यूरिक एसिड, गैस्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
12: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
11: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसिनको समेत सुविधा छ।
12: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
13: नेपाल सरकार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुरोध। यही 2083 वैशाख 2 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म देशैभर राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन हुँदैछ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सङ्घ संस्थामा आउने गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराई गणनालाई सफल गर्न सम्बन्धित सबैमा सहयोगका लागि अनुरोध छ। आर्थिक गणनामा सहभागी भए सरकारलाई सही विवरण दिनु प्रत्येक प्रतिष्ठान व्यवसायको कर्तव्य हो। तपाईँले उपलब्ध गराएको पूर्ण र सही विवरणले नै देशको आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्दछ। तथ्याङ्क ऐन 2079 अनुसार तपाईँका व्यक्तिगत तथा संस्थागत विवरणहरू पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनेछन्। यो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सबै मिलेर सफल पारौँ। अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना, नेपाल सरकार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय।
9: नागरिक लगानी कोषको नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी भई भविष्य सुरक्षित बनाओ। यस योजनामा न्यूनतम मासिक 500 रुपियाँ जम्मा गरेर सहभागी हुन सकिन्छ।
10: नागरिक लगानी कोष।